मतलब आज का दिन मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा है। और एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। खबर यह है कि डाउनटाउन रैली से खबर आ रही है, शहर की पहचान बन चुकी 50 साल पुरानी हॉलीडे इन की ऐतिहासिक गोल बिल्डिंग, जिसे कभी गिराने की बात चल रही थी, उसे अब पूरी तरह से बचा लिया गया है। एंड इस आइकॉनिक बिल्डिंग को नेशनल लैंडमार्क भी घोषित कर दिया गया है। और अगले हफ्ते ये एक नए रूप में यानी आलीशान होटल इंडिगो के नाम से दोबारा खोलने जा रही है। तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने वाली है। क्या बात है, मतलब बचाया गया, उसके बाद नए से शुरू होने वाली है। नथिंग इज़ लाइक दैट। गिराने की जब बातें कर रही थी, लोगों में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि ये होना नहीं चाहिए, और आखिरकार ये हुआ नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंजॉय करते हैं, अगला एक गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 91.1 नाइट्स एंड हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस यानी कैरोलिना हरिकेन्स की नई शुरुआत हो रही है। टीम के जनरल मैनेजर एरिक टुल्सकी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले सीजन में स्टेनली कप जीतने वाले सभी 23 धुरंधर खिलाड़ी इस बार भी पूरे जोश के साथ रैली में वापस लौट आए हैं और खिताब को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कम ऑन, कर दिखाना है इस बार भी। तो बॉस, शहर में सिर्फ तरक्की और जीत का ही माहौल है। जैसे कि मैं कह रहा था कि पहले से ही आज का दिन काफ़ी अच्छा है और सारी खबरें भी काफ़ी सुहावनी है। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं फिलहाल अगला एक गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल। Fish.

एंजॉय किया आपने एक गाना। आप सुन रहे रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब वक्त हो चुका है मुंबई माया नगरी से बॉलीवुड की खबरें आपके सामने पेश करने का। तो पहली धमाकेदार खबर यह है कि रणबीर कपूर ने अपना 44th जन्मदिन जो है वो मनाया। इस खास मौके पर उनकी आने वाली 4,000 करोड़ की मेगा फिल्म रामायण का एक बेहद खूबसूरत बिहाइंड द सीन दैट इज BTS वीडियो रिलीज हुआ है। इसमें भगवान राम के लुक में कड़ी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं रणबीर कपूर। वीडियो में शो के ओरिजिनल राम यानी अरुण गोविल भी रणबीर को आशीर्वाद देते नजर आए। सच में इसे देखकर फैंस का दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहेगा रेडियो नायरा पर। पका देसी पका लोकल।

0: आपने एंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बनीरवा नाइट्स। एंड दूसरी बड़ी खबर अजय देवगन के फैंस के लिए है, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग आज से ताबड़तोब शुरू हो चुकी है। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमा घरों में धमाल मचाने आ रही है और ओपनिंग डे पर ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार है। क्या आपने आपकी टिकट बुक की नहीं तो जल्द से जल्द कर दीजिए। काजोल का भी ये कहना है और मेरा भी ये कहना है, मेरी बाजुओं में दम है क्योंकि मेरी जरूरत है कम है। यही मैं कह रहा था कि दृश्यम 3 में क्या विजय सालगांवकर पकड़े जाएंगे इस बार और क्या होने वाला है। मतलब जिस तरह का सीरीज है दृश्यम, क्या बताऊं मैं आपको। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, पाव भाजी खाई थी, पणजी गए थे। याद तो है ना। सुनते रहेगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तनिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट कैरी नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM। We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: Harmeet,
1: Tanishq, a Tata product.
3: Tujhe dekh ke pata hai kya lagta tha? Ki tu kuch bahut bada karega. Kitna potential hai tujh mein. Kya ho gaya? Kuch ban kyun nahi paya tu?

0: का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

एसएम थ्री के बारे में क्या ही कहूँ मैं। ये सीरीज ही इतनी लाजवाब है कि क्या होने वाला है, फैंस तो काफ़ी दिनों से, सालों से इनफैक्ट इंतज़ार कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म द विवान बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, ठें ठें ठें ठें ठें ठें ठें ठें ठें, और महज 4 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है। मतलब क्या बात है यार। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया ने एक बयान दिया था कि बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, एंड उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चर्चाएँ जो है वो शुरू हो गई। कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? एंड शाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है। इट्स लाइक नथिंग इज़ लाइक दैट। ये ठंडी ठंडी हवाएं, अब ये जैसे जैसे ठंडी हवाएं आ रही है, बढ़ रही है, बहुत ही अच्छी विंटर की वाइब दे रही है। नहीं, कितना परेशान कर रखा था गर्मी में, लेकिन अब वही है, ठंडी हवाएं और खुशनुमा मौसम के साथ इंजॉय करते हैं अगला एक गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का दीजिए।

बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स, उर्वशी रौतेला। आपको तो पता ही है कि उर्वशी रौतेला की तरफ से उर्वशी ने अपने पिक्स और पर्सनैलिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में एक AI कंपनी के खिलाफ पूरे 7,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। एंड सोशल मीडिया पर कहा कि महिलाओं को नीचा दिखाने और फेक फैन वॉर शुरू करने वाली इस गलत चीज को अब रुकना ही होगा। लाइक 7,000 करोड़, यू कैन इमेजिन, का मानहानि का दावा उर्वशी ने ठोक दिया है। अभी देखते हैं क्या निर्णय आता है एंड उसके बाद क्या होने वाला है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, बॉलीवुड की खबरें मैं आपको सुना रहा हूँ। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर एंड सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला एक गाना। रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल।

वेल एंजॉय किया आपने गाना आप सुन रहे रेडियो नायरा पर निर्माण नाइट्स। और अगली खबर नेशनल क्रश कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए है। फिल्म चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन सीधे लंदन पहुंच चुके हैं। वहां उनकी अगली फिल्म

ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर भारत का डंका बजा दिया है। ब्लैक गाउन और सिर पर खूबसूरत क्राउन पहने जब ऐश्वर्या ने रैंप पर वॉक किया तो उनके रॉयल अंदाज ने और टशन ने पूरे दुनिया को हैरान करके रखा है। मतलब ऐश्वर्या राय इज लाइक खूबसूरती की क्वीन है, जिसे हम कहते हैं नथिंग इज लाइक दैट। इट्स लाइक उन्होंने साबित कर दिया है कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ, दैट्स इट, मेरा नाम ही काफ़ी है। मतलब क्या ही बताएं यार, 90s से किड रेट कर पाएंगे। जब मूवी आ रही थी ताल एंड उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ में जिस तरह से ऐश्वर्या ने काम किया है, नथिंग इज लाइक दैट। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मल नाइट से, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल। अरे हाँ, कैसे हो आप, खुश तो हो ना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

थिएटर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले का ज़माना होता था कि लोग मूवी रिलीज़ होने की इंतज़ार करते थे एंड कुछ भी नहीं था. लेकिन अब OTT आ चुका है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मूवीज़ जो है वो मिल जाती है देखने, इजीली अवेलेबल हो जाती है. लेकिन वो दौर भी क्या दौर था. फिर बहुत सारे कुछ सालों के बाद मूवी दूरदर्शन पर आती थी, 90s की कीड रिलेट कर पाएंगे एंड इंतज़ार करते थे लोग, है ना. तो अभी तो ऐसा है नहीं, मूवी रिलीज़ होने के बाद तुरंत OTT पे आ जाती है, OTT पे आने के बाद TV चैनल्स पे आ जाती है. लेकिन उस समय जो इंतज़ार में मज़ा था, वो जो एक लाइक क्या कहते हैं उसे, खुशी थी मूवी ऑन एयर आने के बाद, वो तो अलग लेवल की हुआ करती थी. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना. बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल.

आपने एंजॉय किया एक गाना, गाना था वागई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडरीवाना नाइट्स। हेलो हाय कसक काय, कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? एंड खुश रहना चाहिए, ना सोचना चाहिए ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में अच्छे से रहना चाहिए। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ हेलो हाय कसक काय। ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि कैसे हो आप सब लोग, इसका मतलब है हेलो हाय कसक काय। सो अगेन ये 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। कल मिलूँगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इस शो पर। एंड किसी भी प्रकार का आप टेंशन ना लीजिए, बस अपने मेहनत से लगे रहिए जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में। एंड डेफिनेटली सब कुछ यार बस खुश होके करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मिलता हूँ कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270-DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

कैसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 49 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

निकल चली, दिल की हालत संभल चली, अब जुनून हद से बढ़ चला।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: अंश जल्दी आ। क्या हुआ? अरे जल्दी आना,
1: ये देख, ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

Hudson Rahir, Radio Nara, 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, Pakka Desi, Pakka Local.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी।

0: सावन की सुनी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन।

हां जी, तो सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आपकी दोस्त और होस्ट अमृता आ चुकी है सुबह सुबह आपके दिन को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाने। जी हाँ, रेडियो नायरा पे आप आवाज सुन रहे हैं अमृता की राइट नाउ। मेरे पास बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन अभी मैं स्टूडियो में पी रही हूँ अपनी एक गर्मा गर्म चाय, विच इज एक्चुअली वेरी टेस्टी। एंड मुझे ये लगता है ना कि कभी कभी सुबह की शुरुआत आपकी अच्छी बातों से हो या ना हो, व्हाट्सएप के स्टेटस गुड मॉर्निंग वाले से हो या ना हो, लेकिन एक बेहतरीन अदरक वाली चाय के साथ जरूर होनी चाहिए। आपका दिन कैसे शुरू हुआ मुझे जरूर बताइएगा ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज RJAMRIJAA। चलिए आइए सुनते हैं ये आने वाला गाना और मैं मिलती हूँ आपको ऑन द अदर साइड।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: कैप्टन मैदान में उतर चुकी है स्मृति मंधाना। जी हाँ बिल्कुल, रेडियो नायरो पे आपके बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस इज योर होस्ट अमृता। और ये खबर लेकर के आ रही हूँ अपने सूत्रों के हिसाब से, मैं आपको बताऊँ एक्चुअली सूत्रों के हिसाब से नहीं, ये बिल्कुल पक्की खबर है दैट स्मृति मंधाना विल लीड इंडियाज वुमेन्स टीम इन बोथ T20 and ODI series against Zimbabwe, and the squads have been announced for the 6 matches home series, जिसमें आपको ये दोनों ही टीम काफी अच्छा खेलते हुए दिखेंगी। और हरमनप्रीत कौर ने ले लिया है कैप्टेंसी से रिटायरमेंट, उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने करना था वो कर चुकी है। एंड ऑन दैट नोट, ये उनकी जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी भी वो खेलेंगे, ऑफ कोर्स खेलेंगे और बहुत ज्यादा इंडिया का नाम भी रोशन करेंगे। इफ यू आर डाई हार्ट फैन ऑफ यू नो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, तो आपको जरूर मेरे साथ इंडल्ज होना चाहिए इस कॉन्वर्सेशन में दैट हु प्लेज वेल इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। जी हाँ, आपको बताना पड़ेगा अपने फेवरेट प्लेयर का नाम ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज RJEMRITAA। Till that, chali zindagi aane wala.
1: Healthy living means Indian tradition. Sunte rahiye healthy rehne ki musical parampara. Only on Radio Naira.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नायरा पे एंड दिस इज योर होस्ट अमृता। और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात कर लिए तो क्यों ना मेंस क्रिकेट टीम की बात भी कर ले। जी हाँ, वेतरन इंडियन सीमर भुवनेश्वर कुमार वो लौट चुके हैं अपनी टीम में। जी हाँ, जिनका सबको बहुत ज्यादा इंतजार था एंड वी ऑल नो कि वो कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं एंड अब तो वो बैटिंग भी काफी अच्छी करते हैं। और फुल इंडियन स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, ये सारे प्लेयर्स अपॉइंट हुए हैं। तो देखने में बहुत मजा आने वाला है ये T20 सीरीज एंड आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दैट। आप बताइए आपके फेवरेट प्लेयर का नाम मेंस क्रिकेट टीम में, क्योंकि अभी तक बात हो रही थी लड़कियों की, अब बारी है लड़कों की। आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और माय इंस्टाग्राम विद इज RJAMRITAA, वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। ऑफ कोर्स रोज बातें होंगी हमारी, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि यार आप लोगों को बहुत सारी चीजें भी है बताने के लिए, तो ऐसे ही बताती रहूंगी। बस आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो नायरा के साथ, कहीं मत जाना।

डार्लिंग, इफ यू आर प्लानिंग अ डेट विथ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऑफ कोर्स, तो आपको प्लान करना चाहिए ये मूवी. कौन सी बताती हूँ आपको. रेडियो नारा पे आप आवाज सुन रहे हैं अमृता की, और सुबह सुबह का टाइम है. आई ऑलरेडी नो कि आप कितने ज्यादा बिजी होंगे, तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने का तो ख्याल ही नहीं आया होगा. लेकिन चिंता मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ. बताती हूँ आपको, इफ यू आर प्लानिंग अ डेट या फिर सरप्राइज का भी आप सोच रहे हैं, तो जरूर आप उनको वैरिटी मूवी दिखाने के लिए लेके जा सकते हैं, जो रिलीज हो चुकी है. एंड ऑफ कोर्स इसमें एन हैथवे एंड यू नो डकोटा जॉनसन है, और काफी अच्छी ये मूवी है. वैसे मैं आपको बताऊं, मैं इसकी बुक तो पढ़ चुकी हूँ, और वर्ड टू वर्ड मुझे इसके डायलॉग्स याद है. पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी थ्रिलर मिस्टीरियस बुक है, और अब जिसकी मूवी बन चुकी है, जिसका ख्याल मैं एक्चुअली सोते वक्त भी नहीं अपने दिमाग से निकाल पाती हूँ. एक ऐसी स्टोरी जिसमें यू नो विलेन कौन है समझ नहीं आता, और विलेन वो है भी कि नहीं ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा. तो है ना ये जबरदस्त मूवी. आप जरूर अपने पार्टनर को ये मूवी दिखाने के लिए लेके जा सकते हैं, एंड हेंस आपके पास एक बहुत ही अच्छा डेट नाइट प्लान हो चुका है. और आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, विच इज RJAMRITAA. Till that, चलिए सुनते हैं ये आने वाला गाना. मैं मिलूंगी आपको ऑन द अदर साइड विथ रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर में.

Okay, darling, this is your host Amrita and you're listening to Radio Nara Horoscope Rapid Fire. Mesh Rashi yani Aries ki love life aaj kafi zyada active hone wali hai. Aaj ho sakta hai ki aapko koi naya shakhs pasand aa jaye. Use aap bilkul alag hat ke nazariye se dekhein aur aapko usse pehli nazar mein pyar ho jaye. घर की बात बताऊं तो छोटे मोटे जो झगड़े थे वो खत्म होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं. फैमिली और सोशल लाइफ में शांति भी रहेगी और सबसे तमीज से पेश आने की वजह से रिश्तेदारों में आपकी इमेज भी बहुत बढ़ जाएगी. और आज के लिए लकी कलर है आपका फॉरेस्ट ग्रीन. चलिए सुनते हैं ये आने वाला गाना, आई एम गोइंग टू कैच यू ऑन द अदर साइड. जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा रेडियो नायरा, स्टे ट्यून्ड.

CMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: Okay, darling, this is your host Amrita and you're listening to Radio Nara Horoscope Rapid Fire.
1: Vrishabh Rashi, yani Taurus, purane jhagde khatam honge. Bhai behno ya dosti se jo bhi chal rahi thi na problems, wo sari tension dur hoti hui nazar aa rahi hai. Dimag halka bhi mehsoos karega. Aaj koi choti work trip ya random phone call aapke liye success ka ek naya raasta khol sakte hain, jo aapko agle 3 saal tak kaam bhi aayenge. To zaruri hai ki aap sare mails acche se check kare aur kisi ka bhi phone आए तो पिक जरूर करें एक बार. आज के लिए आपका लकी कलर है मरून. चलिए सुनते हैं ये आने वाला गाना आई एम गोइंग टू कैच यू ऑन द अदर साइड.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: योर होस्ट अमृता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर।
1: कन्या राशि यानी वर्गोस, हर काम को परफेक्शन के साथ करिए। छोटी छोटी बातों पर आपका फोकस आपको बहुत तारीफें दिलवाएगा। आज किसी की मदद करना आपको खुशी ही नहीं देगा बल्कि अपने प्रोफेशनल सर्कल में आपकी इज्जत भी बढ़ाएगा। आज का लकी कलर है आपके लिए गोल्डन।
0: चलिए सुनते हैं ये आने वाला गाना आई एम गोइंग टू कैच यू ऑन द अदर साइड।

0: होस्ट अमृता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर।
1: तुला राशि यानी लीब्रा की जिंदगी में दोस्ती से बढ़कर चीजें होनी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे दोस्ती से बढ़कर कुछ और बात बन सकती है। अपनी आंखें खुली रखे और ये प्यार के जितने पन्ने हैं ना उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेटवर्किंग का दिन है, नए मौके आपके ग्रुप चैट्स पर और दोस्तों के बीच ही छुपे हैं, तो आप उन्हें जरा ध्यान से देखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे।
0: चलिए सुनते हैं ये आने वाला गाना, आई एम गोइंग टू कैच यू ऑन द अदर साइड।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

कुछ समझ में नहीं आया। फिर से सुन। भाई निकल सीधा जाके भाई पुरु, भाई निकल सीधा जाके भाई पुरु, थोड़ा आगे भाई निकल सीधा जाके भाई निकल, भाई निकल भाई निकल भाई। घूम के वापस उधर ही आ गए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: तो बताओ जाना किधर है?
1: सुन, मायने के सीधा जाके दाएं गुरु, दाएं के सीधा जाके दाएं, मायने के सीधा जाके दाएं गुरु, दाएं के सीधा जाके दाएं, फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं।
0: हैं? कुछ समझ में नहीं आया।
1: फिर से सुन, मायने के सीधा जाके दाएं गुरु, दाएं के सीधा जाके दाएं, फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं के मायने के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

0: Okay, darling, this is your host Amrita and you're listening to Radio Nara Horoscope Rapid Fire.
1: Makar Rashi yani Capricorns. कोई ऐसा काम जो आप कई हफ्तों से डाल रहे हैं उसे आज खत्म करने का बहुत अच्छा दिन है। कोई सरप्राइज या रिवॉर्ड या बोनस भी मिल सकता है आपको। आज खुद के बारे में सोचने का दिन है। स्टेज पर आने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। लकी कलर है आपके लिए सिल्वर।
0: चलिए सुनते हैं ये आने वाला गाना आई एम गोइंग टू कैच यू ऑन द अदर साइड।

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle & Dog. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabri sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायडा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Freywork, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: Beautiful, you don't wanna settle, you move, it's good. Beautiful, you don't wanna settle, you move.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तनिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka desi, pakka local.

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
1: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
0: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
1: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armito on the mic, writing what I feel.
1: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल एंड ऑल. वेल, हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है. द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग. Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson A. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिसमत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: गाना था यार एक नंबर, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, LG 4, 40, 90 AM, 99.9 FM, LG 3, 4, Telugu, Naira, same. मैं हूँ आपकी अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूल्स एंड ऑल।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री music characterized by the great musical stories, inspired harmonies, instrumental and arrangement. Top of the great set at the stage, Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन करिए मॉर्निंग।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डूंस एंड टॉक। पता है बहुत थकी आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइट, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस ऑसम ग्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डून सेंटर. वेल, हमारे ट्राइंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है. हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी US नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Pakka Desi, Pakka Local.

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD 4 for 90 AM and 99.9 FM HD 3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morris Ville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, crispy डोसा, चपाती, चाट and flavor जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विले, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD 4 49 AM 99.9 FM HD 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. Lace up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gari, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pata desi, pata local.

0: Gaana, aap ne enjoy kiya on 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM and 99.9 FM LG3 for Telugu Naira se. Main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangles and Dogs.
1: Well, हमारा ट्रायंगल वी स्टेपिंग इन टू द क्राफ्ट समर इन सी ग्रुप सेलिब्रेट होने वाला है. ईच वीकेंड इन जुलाई पॉटर एंड स्टूडियोज विल हैव सेवरल इवेंट टेकिंग प्लेस फॉर द ग्रेट एक्सपीरियंस इन सी ग्रुप एरिया. फ्रॉम क्लीन ओपनिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड सम हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन प्ले, वी होप यू विल प्लान योर विजिट एंड फर्स्ट हैंड लुक एट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉटरी. सम पॉटरी स्टूडियोज में रिक्वायर अ रिजर्वेशन टू बी इंक्लूड इन द एक्टिविटीज, सो यू विल नीड टू वर्क डायरेक्टली विद ईच साइट इंडिविजुअली. वी लुक फॉरवर्ड टू विजिट टू असी ग्रुप. मजा आने वाला है. जिनको सच में इंटरेस्ट है पॉटरी में, जरूर विजिट कीजिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 4090 एएम 99.9 एफएम HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। कहा जा रहा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira Sahi, मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून सेंटर. उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए. पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक. हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक. चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक. क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान. 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान. बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट. 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519. अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454. फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो.

Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: में सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम है। हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट द NCDU बिलफिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिस्मत करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देखिए, पक्का लोकल।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Dunes and Talk। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं on 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Radio Naira सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: CFM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 1490

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM। We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: तो बताओ जाना किधर है?
1: सुन, मायने किसी बजे के दाएं गुरु, दाएं किसी बजे के दाएं, मायने किसी बजे के दाएं गुरु, दाएं किसी बजे के दाएं, थोड़ा अभी मायने के दाएं किसी बजे के दाएं के दाएं।
0: हैं? कुछ समझ में नहीं आया।
2: फिर से सुन।
1: मायने किसी बजे के दाएं गुरु, दाएं किसी बजे के दाएं, थोड़ा आगे मायने के दाएं किसी बजे के दाएं के दाएं के मायने के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

अगर आप ज्वेलरी शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know what? Rally Trunk Show आ रहा है 17th और 18th of October को Courtyard by Marriott Rally Kerry में सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक. और सबसे खास बात, यहाँ आप enjoy कर सकते हैं gold और diamond jewelry की value पर making charges में up to 25% off. तो अपनी favorite jewelry choose कीजिए और इस special offer का फायदा उठाइए. Marked dates 17th and 18th of October, Courtyard by Marriott Rally Kerry, Rally Trunk Show, because every occasion deserves a little more sparkle. And now you enjoy all the upcoming songs only on Naira.

कभी कभी ना थोड़ा सा गायब हो जाना भी जरूरी होता है। 3 हफ्ते, हाँ जी, पूरे 3 हफ्ते मैं रेडियो से दूर रहा। मैं घर से निकलता था प्रॉपर तैयार होके। इनफैक्ट लास्ट वेंसडे क्या मौसम था यार, क्या मज़ा आ रहा था। सोच के आया था मैं बातें करूंगा बारिश की, वरांदे की, और बैठ के वहाँ पे पकोड़े खाने की। परंतु क्या करें, संसार, इस सोसाइटी के जो उसूल हैं, जो रस्में हैं, उनकी जो बेड़ियाँ हैं ना, उन्होंने जकड़ लिया, तो मैं आ नहीं पाया। एनीवेज, बट हाँ, मुझे ब्रेक मिला। पहले लगा चलो अच्छा है, थोड़ा ब्रेक है, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आदत नहीं, ज़रूरत होती है। जैसे शाम की चाय कुछ लोगों के लिए, सर्दियों की धूप, और वेंसडे की शाम मेरे लिए इधर उधर की बातें। तो अगर आप सोच रहे थे अरे भाई वो आवाज़ कहाँ गई, तो मैं वापस आ गया हूँ। और सच कहूँ, आपने मुझे मिस किया या नहीं किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको ज़रूर मिस किया, ऐसा मुझे कहना पड़ता है। नहीं नहीं यार, आई रियली मिस माई रेडियो। शायद थोड़ी दूरी की भी अपनी एक वैल्यू होती है, मुझे ऐसा लगता है। जब कोई चीज़ रोज़ मिलती है या रेगुलरली मिलती है, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस का इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब 3 हफ्ते ना मिले तो पता चलता है भाई ये तो अपनी सी चीज़ थी। तो वेलकम बैक टू इधर की बातें, मैं हूँ आपका होस्ट अर्पित, और आज हम फिर वही करेंगे, पुरानी बातें, पुराने गाने, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, और हाँ, आज करेंगे कुछ 90s का ट्रिविया भी, क्योंकि 90s में गूगल नहीं था। जो याद था वो याद था, और अगर याद नहीं आ रहा हो तो बस आंखें बंद करके दिमाग में रिवाइंड करना पड़ता है, बिल्कुल कैसेट की तरह, रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड, और फिर कचक, हाँ याद आ गया। कभी कभी गलत याद आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होता है। तो आज देखते हैं कितना 90s अभी भी आपके दिमाग में जिंदा है। कुछ सवाल म्यूजिक के होंगे, कुछ फिल्मों के, कुछ टीवी के, और कुछ ऐसे जो शायद आपको सीधा किसी पुरानी शाम में ले जाएं, क्योंकि नॉस्टैल्जिया की खूबसूरती ही यही है। कभी एक गाना, एक आवाज़, एक खिड़की से आती धूप, और पूरा एक जमाना वापस आ जाता है। तो चाय हो तो एक कप और बना लीजिए, कॉफ़ी है तो फेंट लीजिए, गाड़ी चला रहे हैं तो संभाल के चलाइए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 3 हफ्ते की दूरी के बाद मैं भी वापस आ गया हूँ, और इधर उधर की बातें भी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे गाने के साथ जो शायद गाना कम है, बस एक मूड है।

0: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: वाओ रिमिक्स का रिमिक्स, ये तो अमेजिंग था। और वो ये पूरा रिमिक्स नहीं था, इट लाइक पहले के 10 सेकंड में कुछ तो अजीब सा कर दिया था और आखिरी के 30 सेकंड में कुछ कुछ हो रहा था कि रिमिक्स करने की कोशिश करी जा रही थी एक रिमिक्स गाने को। एनीवेज, तो मैं जैसा ये बोल रहा था कि लास्ट हफ्ते क्या सही मौसम था यार, लाइक क्लाउडी, अभी भी अच्छा ही मौसम है, ठंड बढ़ गई है, बट मैं ये सोच के आया था कि हम बातें करेंगे वरांदे की। यहाँ क्या मस्त वरांदा होता है, एक तो यहाँ नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पुराने जो घर होते थे इंडिया के अंदर, स्पेशली मोहल्ले में या जो 80 से घर बने हैं, बरामदे हैं आपके जिसके अंदर ऊपर तो जाल लगी है या थोड़ा सा कवर्ड है या फिल टोटली ओपन है। और यूजली क्या होता था उसके अंदर, आपकी किचन सामने, लाइक यू ना, इट्स नॉट लाइक कनेक्टेड है कि किचन और बेडरूम और ड्राइंग रूम सब कुछ कनेक्टेड है, ना ना ना ना, उस टाइम में ये हुआ कि बरामदे में दूसरी साइड में आपका किचन है, दूसरी साइड में आपका बाथरूम है और इस तरफ आपके बाकी रूम्स हैं, या इट्स काइंड ऑफ स्कैटर्ड अराउंड। और जब बारिश होती थी आए हाय, और उसके अंदर भाग भाग के फिर वहाँ भाग के जाना, यहाँ भाग के आना, वहाँ पापा बैठे हुए हैं बिल्कुल यू नो आराम से, बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारी को इग्नोर करते हुए ऑर्डर कर रहे हैं, अरे भाई पकौड़े हो जाए मज़ा आ जाए, हम भाग रहे हैं किचन के अंदर, मम्मी ने पकौड़े बनाए लेके आ रहे हैं, पापा को दे रहे हैं, पापा कह रहे हैं अरे यार इसके अंदर चटनी मिल जाती है मज़ा आता है, हम कह रहे हैं कि मजाक बना रखा है यार, हम बड़े होंगे हम ये नहीं करेंगे, और हम बड़े होते ही हमने सबसे पहले वही करा। वेल क्या मस्त मज़ा आता है ना, मुझे वरांदा बहुत पसंद था कि जो भी फ्रेंड्स आ रहे हैं वो वहीं पे खेल रहे हैं, वहीं पे झूले पड़ रहे हैं, वहीं पे आपकी सावन के झूले पड़ रहे हैं, जो भी पार्टी हो रही है बर्थडे की वहीं बना रहे हो आप, क्या मज़ा आता था। और अगर जाल होता था ऊपर, अगर किसी को याद हो वो जाल होता था ना जिसके अंदर लोहे के वो जो फ्लैट पत्ते हो बीच में गैप्स होता था, और कहीं से अगर आप ऊपर जाल के ऊपर चल के जा रहे हैं और कहीं आप छोटे रह गए हैं, लेकिन रह नहीं गए आप छोटे ही हैं बचपन में, और आपका पैर फंस गया और फिर निकल नहीं रहा है, अरे यार क्या दहशत होती थी, पूरा घर पूरा परिवार निकल के आता था कि भाई हेल्प हम करेंगे, और फिर तेल वेल लगा के पैर निकाला जाता था। जिनको नहीं समझ में आ रहा, भैया आपका बचपन लकी था कि आप उस एग्नी से नहीं गुजरे हैं, जिनको पता है और जो सिचुएशन में फंसे हैं, जैसे कि मैं तो कई बार फंसा हूँ, तो मुझे पता है यार क्या डर होता था इस चीज़ का कि बॉस जाल में नहीं आ रहा हूँ, पैर फंसता है और उसका इतना दर्द होता है उसे निकालने में। बट एनीवेज, तो आज का ट्रिविया शुरू करते हैं। मैं बजाने वाला हूँ एक ट्यून, बहुत सिंपल है, शुरू में सिंपल ही रखेंगे, और फोंगरे बताइएगा कि ये किस पिक्चर की ट्यून है। नंबर है 919-999-8595। तो शुरू करते हैं पहली ट्यून।

ऑलराइट, तो ये गाना किस पिक्चर का है मुझे बताइए। बातें करेंगे इस पिक्चर के बारे में। नंबर है 9199998595। और हाँ, ध्यान से, क्योंकि ये जो ट्यून है, एटलीस्ट मुझे मालूम है कि तीन हिंदी गाने हैं उनकी स्टार्टिंग ट्यून है। डिफरेंट गाने, ऑफकोर्स ओरिजिनल जो गाना इंग्लिश का वो अलग है, हम उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल दिमाग पे जोर डालिए कि क्वालिटी क्या थी, क्या नाजुक पना था ट्यून्स के अंदर, कौन सी डिटेलिंग थी। तो बताइए कौन सी पिक्चर का गाना है। नंबर है 9199998595। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ।

0: What if feeling better started with restoring your inner balance? Stress, emotional heaviness, low energy. Sometimes your body and mind are simply asking you to pause, reset, and recharge. Discover Pranic Healing, a practical non-touch practice that works with life force to support greater calm, clarity, energy, and well-being. Experience it first at a free Twin Hearts meditation and healing session every Thursday at 7 p.m. Ready to go deeper? Join the beginner-friendly Level 1 Basic Pranic Healing class, September 26th and 27th in Cary, or October 3rd and 4th in the Charlotte area. Tuition is $495. Pranic Healing complements professional care. Register at pranichealingnorthcarolina.com or call 252-410-2268. Pranic Healing North Carolina. Restore your energy, restore your balance.
1: At Joy Girls Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kuku Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangle's Biryani. Fresh, flavorful.
2: The Ashley Sanchez Show is on and the North Carolina Courage are making their push for the playoffs. With only 2 regular season home games left, every match matters and every moment could be historic. Don't wait for the highlights. Don't watch from the couch. Be there to experience it live. Tickets are selling fast. Get yours before they're gone at tickets.nccourage.com.
3: Ab sun rahe hain Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM. Pakka desi, pakka lokal.
4: यार कितने बड़े एड्स हैं यार, मतलब कानों से ज़्यादा तो एड्स आ रहे हैं. बट एनीवेज, सो मुझे लगता है कुछ तकनीकी खराबी हो गई होगी क्योंकि मुझे एक भी फ़ोन नहीं आया. बट दैट्स ओके, आई एम प्रिटी श्योर ये गाना इतना मुश्किल नहीं था. स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई है फ्रॉम योर एंड, मैं तो बस इंपायरिंग कर रहा हूँ. सो एनीवेज, तो मूवी का नाम था इश्क, आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला एंड काजोल. क्या मूवी थी यार अपने टाइम के अंदर, स्पेशली वो जो सीन था मरा मरा मरा मरा मरा, क्या फेमस हुआ था यार स्कूल के अंदर. फिर हम वही करते फिरते रहे, मज़ा आता था. बट एनीवेज, हम बढ़ते हैं अगले ट्रिविया की तरफ, अगला गाना. और ये गाना डूड, आई एम होपिंग कि आप लोगों को अपने पुराने बचपन, पुराना बचपन क्या होता है, बचपन बचपन होता है, अपने बचपन में लेके जाए. क्योंकि ये गाना तो यार डूड सुपर डुपर हिट था. और ये आई एम श्योर जो 90s के किड्स थे, लड़के स्पेशली, उन्होंने तो खूब डांस करा होगा और ये इन्होंने बिल्कुल मिमिक करा होगा. तो चलो सुनते हैं. और नंबर पहले बता रहा हूँ, नंबर है 919-999-8595. तो फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा कौन सी पिक्चर का गाना है. तब तक हम सुनने की कोशिश करते हैं इसे.

आई थिंक इतना ही काफी था, बल्कि मुझे लगता है बस वो धिना दिन धा ही काफी था, इतना सुनाने की जरूरत नहीं मुझे। तो बिल्कुल मुझे बताइए किस पिक्चर का गाना है, बातें करेंगे आपसे। नंबर है 9199998595। इसी बहाने हम इस पिक्चर के बारे में थोड़ा नॉस्टैल्जिया मूड में चले जाएंगे, अगर कोई सामने से फ़ोन करेगा, वरना भाई मैं अपनी ही बातें करता रह जाऊँगा।

एनीवेज, तो मैं बता रहा था कि हाँ अगला टीवी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी ना मौसम चेंज होना शुरू हुआ है यार। और ये जो मौसम है, जब हमारा 90s में जब हम घर पे रहते थे वहाँ पे बचपन में, जब वहाँ ट्रांजिशन होता था गर्मी से सर्दी में, तो बिल्कुल एक रिचुअल शुरू हो जाता था घर के अंदर। सबसे पहले होता था कि भैया रजाइयाँ निकाली जाए क्योंकि उनको धूप लगानी है। कंबल, रजाई, वो शनील की रजाई, वो जयपुरी रजाई, और वो मोटा कंबल जो पता नहीं क्यों पहनते थे, चुपता भयानक था, बट हाँ उन सबको धूप लगा जाती थी। उनको उठा के पहले तो संदूक खोला जाता था और हम बच्चे उसके अंदर कुदकुदे देख रहे होते, क्या है इसके अंदर, कौन सी नेपथलीन गोलियाँ हैं और क्या छुपा के रखा है मम्मी ने, अरे ये क्या है वो क्या है, और मम्मी डांट लगाइए पहले काम करो दिमाग खराब कर रखा है। और फिर हम उन्हें ले जाके छत पे डाल रहे होते हैं या रेलिंग पे डाल रहे होते हैं, धूप लगा रहे होते हैं, क्या मजा आता था। और फिर अलग एक संदूक खुलता था जिसके अंदर होते थे सर्दियों के कपड़े, स्पेशली वो स्वेटर, और कोई नॉर्मल स्वेटर नहीं, वो ऊन वाले स्वेटर जो घर के ऊन से, लाइक ना मम्मी ने गॉसिप करते करते वो सिलाइयों से बनाए होते हैं, पूछ के कि क्या नाप है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि क्या मम्मी लिख रही है नोटबुक के अंदर और क्या बन रहा है और कैसे बना रही है। रोज हर रोज नाप पाया जाता था कि ये कितना हाथ हो गया कितना पैर हो गया, और निकलता हमेशा छोड़े था। एनीवेज, अभी सुन रही होंगी मेरी मम्मी बहुत लड़ाट लगाने वाली है, बट फैक्ट इज फैक्ट डूड, उससे सच ऐसे ही होता है। एनीवेज, कई बार जो स्वेटर होते थे, चाहे जो आपको पसंद है या नहीं पसंद है, वो कितनी बार छोटे जाते थे, उनका गला वो तंग हो जाता था क्योंकि आप बड़े हो गए, स्वेटर वैसा का वैसे ही रह गया, या वो धोखे जब डाला था वो सिकुड़ गया। और वो जब पहनने की जद्दोहद होती थी, पूरे अपने आप में मेहनत ही होती थी यार, डाले आ रहे हो पूरी एफर्ट लग रही है, सर डाला और जब आपने हाथ, बड़ी मुश्किल से तो पहले सर फंसा, जब हाथ डाला पता चला वो छोटा ही हो गया, तो मैं कह रहे यार ये तो छोटा हो गया कोई नहीं, उसने क्या अभी 10 मिनट में मेहनत करके डाला है, पूरा बदन चुभ रहा है सुइयों से, इनके ऊन से, मेरे गले के अंदर तोते उड़ चुके हैं, अब इसे निकालना पड़ेगा, हे भगवान। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आई एम श्योर हुआ होगा, कौन से आप लोग सेकंड हैंड लोग हैं, हुआ सबके साथ ही है, तो फोन करके बताइए, नंबर है 9199998595 एंड आई एम होपिंग मैं सही नंबर दे रहा हूँ, सही नंबर दे रहा हूँ मैं, तो फोन करके जरूर बताइए कि आपके साथ कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं। चलिए अब अगले गाने की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि इजी तो कोई गैस कर नहीं पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये अतरंगी टाइप का है, ये वो जो होते हैं ना बिल्कुल जो कीड़े टाइप के होते हैं, ये उनको पता होगा, तो लेट्स सी।

तो बताइए क्या लगता है आपको, आपके दिमाग के जो कीड़े हैं उन्होंने हिलना शुरू करा है, तो मुझे फोन करके बताइए कौन सी पिक्चर लगाना है। नंबर है 9199998595।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रानी क्या यह रहती थी?

0: काशी के राजा रानी की।
1: ऑलराइट, अगेन नो कॉल, इट्स ओके। मुश्किल गाना था मुझे लगता है लोगों के लिए, या शायद नहीं, या जिनको पता था उन तक गाना पहुंचा ही नहीं। बट एनीवेज, जो ट्यून मैंने पहले बजाई थी वो थी हेरा फेरी गीत, ना ना ना ना ना। मैं नहीं गाऊंगा कि बहुत बेसुरा गाता हूँ, लोगों का म्यूजिक से भरोसा उड़ जाएगा। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे मौसम ट्रांजिशन की, जब आपकी गर्मियों से सुहावने मौसम हल्की हल्की ठंड सर्दी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या मजा आता था। तो हमने तो बात कर ली संदूक से जब निकलते थे आपके रजाइयां, वो चुभने वाले ऊन के स्वेटर, और एक चीज जब घर में माहौल बनता था गाजर के हलवे का बनाने का। और ऐसा ऐसा नहीं कि आपने प्रेशर कुकर में डाला या माइक्रोवेव में डाला, दो मिनट बन गया, ना ना ना ना ना ना, वो बनता था घंटों तक। और घंटों से मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट जा रहे हैं, गाजर लेके आ रहे हैं, छील रहे हैं, फिर बना, ना वो पार्ट तो आप इग्नोर ही करिए, वो तो है ही नहीं। घंटों से बनने का मतलब है जब वो कढ़ाई में जाता है, जब उसमें पड़ता है दूध और शक्कर, और वो घंटों तक पकता है, दूध पकता है, गाजर गलती है, और बीच बीच में आके मम्मी कलछी हिलाती रहती हैं ताकि कढ़ाई में जल ना जाए, गाजर ना चिपक जाए बॉटम पे। और हमारा भी काम होता है, जो शुरू में हमें बड़ा एक्साइटिंग लग रहा होता है कि यार हम कराएंगे कलछी, और शुरू में हमसे जलती नहीं है क्योंकि तब भारी हो चुका होता है, और फिर बाद में हम चाहते हैं पक कि यार हो गया अब दो। ऐसा थोड़ी ना कि 8 घंटे तक आपका गाजर हाँ हलवा ही बनता जा रहा है। वैर मुझे बहुत कुफ्त होता था कि मुझे दो मैं खाऊं बैठ के। अब मुझे नहीं लगता मैं एक्सेजरेट कर रहा हूँ, बट मेरे घर में तो यार लगता था कि 8-9 घंटे तक, या कई बार तो मुझे लगा 2-3 दिन तक बन रहा था, बने ही जा रहा है। कब बनेगा, क्या हो रहा है, ये कौन सी हांडी किसके लंगर लगने वाला है जब तक खाना बना रहे हैं, अभी तक बन ही नहीं पा रहा है। बट एनीवेज, आप बताइए अपनी कहानी अगर आपके पास भी है, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं, नंबर है 9199998595। हम बढ़ते हैं अगले थीम की तरफ, और ये वो गाना है, मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी कि मैं उस दौर में था जब मैं ये पिक्चर और ये गाना मैं सुन पा रहा था सही टाइम पे। लाइक यू नो, एक होता है आप गाना अभी भी सुन सकते हैं, लेकिन ये उस टाइम पे आई थी जहाँ पे आई वॉज परफेक्टली प्रेजेंट, जो होता है ना राइट टाइम राइट प्लेस राइट एज, वो वाला था। तो बताइए कौन सा है ये गाना, किस पिक्चर का है, फिर हम बात करेंगे इस बारे में।

राइट क्या ये तो मुझे लगता है उस टाइम पे हमारा नेशनल एंथम था, ये जो साउंड ट्रैक था, और इसके अंदर जो हीरो हीरोइन थे ऑफ कोर्स वो तो हमारे नेशनल क्रश ही थे, डेफिनेटली हीरोइन तो थी, हीरो भी यार नेक्स्ट डुओ टाइप के ये थे। तो बताइए, नहीं बताना कोई बात नहीं, आई एम जस्ट होपिंग इसके थ्रू आपको अपनी पुरानी यादें ताजा आ गई हो, आपको पुराना टाइम याद आ गया कि अरे यार ये गाना सुनते थे हॉस्टल के अंदर दीवार पे अलमीरा के पीछे छुप के, ऐसे बड़ा सा पोस्टर लगा रखा था हमने, ऐसे ऐसे डायलॉग्स हम अपने दोस्तों को बोलते थे। तो याद करिए, फोन करके भी बताइए।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9. Welcome back. आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें और मैं हूं अर्पित और we have one caller. चलिए उनसे बात करते हैं. Hello. Hello. आप मेरी बात सुन पा रहे
2: हैं?
1: हाँ, सॉरी माय बैड, मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करना भूल गया था. अरे रेडियो लगता ही आसान होता है बहुत ऑपरेट करना, लेकिन आज भी मुझे लगता है मुझे चार पांच हाथ चाहिए होते हैं सारे बटन दबाने के लिए. बट वेल, थैंक यू फॉर कॉलिंग. कैसे हैं आप?
2: अरे बढ़िया है, आप बताओ.
1: बस सब बढ़िया,
2: घर पे जा रहा था तो आपकी याद आ गई.
1: अरे अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया.
2: मैं वैष्णिक से कॉल किया था.
1: हाँ जी कहिए.
2: नहीं मैं बोला था कि वैष्णिक के साथ ही हमारे मेरी बात हुई.
1: अच्छा,
2: उनसे भी एक कॉल किया था.
1: ओके ओके. हाँ वैष्णवी भी काफी टीविया करती हैं और उनको बहुत कॉल आ रहे हैं मुझसे ज्यादा. सो इन अ वे आई एम जेलस, बट दैट्स ओके. आपको टाइम मिला मुझसे बात करने के लिए, आई एम वेरी हैप्पी. तो आपको क्या लगता है कौन सी पिक्चर है?
2: ये तो आर स्टेडियम है, हमारे सर की मूवी
1: है. आई नो,
2: रहना तेरे दिल में की मूवी का. तो कैसे भूल सकता हूँ मैरी वास्तव का जो बैटल. मैं तो बहुत रिलेट करता हूँ बिकॉज जो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ
1: ना. फायर,
2: मैकेनिकल इंजीनियर.
1: फायर है आपने. तो बस उतना ही रिलेट करते हैं या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है?
2: नहीं, लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ.
1: हाँ तो ऐसी बातें हम रेडियो पे भी नहीं कर सकते हैं यार. दैट्स ओके. अगर हुआ भी है तो अब तो नहीं बता पाओगे. बट अमेजिंग डायलॉग्स थे क्या?
2: एग्जैक्टली.
1: कोई डायलॉग बताए आपको जो फेवरेट है इसके अंदर?
2: ऐसा पता नहीं, बट लेकिन मेरे को एक फैक्ट याद है उसका कि दिया मिर्जा और आर माधवन का फर्स्ट डिब्यूट. तो वो पता है.
1: लेकिन माधवन के एक जो डायलॉग है, मतलब सारी डायलॉग उसके क्लासिक लगते हैं मुझे. एक वो डायलॉग है जिसके अंदर जब रैगिंग हो रही, नॉट रैगिंग एग्जैक्टली, लेकिन माधवन कॉलेज टाइम पे होता है और वो सैम के गैंग की तरफ जाता है जहाँ पे लड़कियां होती हैं, और उन्हें छेड़छाड़ने के बाद वो कहता है जब सैफ अली खान आते हैं कि गरीबों का मसीहा, बहनों का भैया आ गया आ गया. क्या डायलॉग्स है यार, कैसे सोच के लिखते थे ये डायलॉग्स. बढ़िया बढ़िया. बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो हैं जो एक, मैं एक और आपसे ट्रिविया करूं, एक और बैकग्राउंड म्यूजिक है जो मैं चलाना चाहूंगा. और मुझे संभाव लग रहा है आपको पता होगा, शायद आप मूवी कैस ना कर पाए बट यू बी लाइक हाँ ये मैंने सुना हुआ है. बजाऊ मैं? बताएंगे आप? ठीक है. ओह ओके, मे बी आफ्टर द कॉल, क्योंकि शायद मैं कॉल पे भी हूं तो उसके थ्रू मैं बजा नहीं पाऊंगा. वाओ, टेक्निकल लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं आज. बट या आई एम सॉरी, लेकिन हाँ आपसे बात करने के बाद मैं ये बीजीएम बजाऊंगा जो मैंने एक टाइम पहले भी बजाया था लेकिन कोई आंसर नहीं कर पाया था. बट बहुत कैची है ये बीजीएम. पिक्चर शायद इतनी हिट नहीं है बट जो दीवाने जैसे होते हैं ना, जिनके दिमाग में जो कीड़े होते हैं जो चुन चुन के ऐसी मूवीज ढूंढ के लाते हैं, उन लोगों को पक्का ये पता होगा. तो प्लीज सुनिएगा और अगर आपको मालूम है तो जरूर मुझे दोबारा फोन करिएगा, हम दोबारा बात करेंगे. वेल थैंक यू फॉर कॉलिंग.
2: थैंक यू, थैंक यू,
1: बाय. Alright, तो ये थे अमर साहब. वाओ, मजा आ गया बात करके. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि उन्होंने वो मूवीज देखी हुई हैं, देन वी कैन टॉक अबाउट इट, डाइसेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं वो स्पेशल डायलॉग्स. वो कहता है अरे यार ये डायलॉग याद है, ये सिचुएशन याद है. क्या मजा आता है. बट हाँ एनीवेज, बढ़ते हैं आगे की तरफ. और मैं बनाने बजाने वाला हूँ साउंड ट्रैक, जो कि सॉन्ग नहीं है, दिस इज जस्ट एक सीन है उसके अंदर ये साउंड ट्रैक था, कोई रिलिक्स नहीं है, बस सीन की एक है। तो देखते हैं किन लोगों को याद होता है।

जी हाँ, तो मैं हिंट दे सकता हूँ, बड़ी लाइट सी मूवी थी एंड जो उसके अंदर एक्टर है, मेन वो ऐसी मूवीज करते थे बट दिस वॉज मोर लाइक जो उनका पीक चला था ना, एंड ही डिड अ वेरी लाइट कॉमिक होमली स्टाइल ऑफ मूवी, तो आई डोंट थिंक सो ये हिंट इतना अच्छा काम कर रहा है. एनीवेज, गोविंदा इस मूवी के अंदर उर्मिला मातोंडकर है, लेकिन ये जो साउंड ट्रैक है ये उन पे नहीं है, ये किसी और पे है. तो सोचिए, दिमाग के घोड़े घुमाइए और मुझे फोन करके बताइए. और अमर साहब, अगर आपको याद है, आपको मालूम है क्या कुछ भी आपके दिमाग में स्क्रैचिंग हुई है कि हाँ ये चलो पिक्चर नहीं मालूम है लेकिन हाँ मैंने सुना हुआ है, तो फोन करिए. नंबर 919-999-8595.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: And we have Amar Saab फिर से calling, so हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। Hello.
2: Hello.
1: हाँ जी अमर साहब, बताएं।
2: मुझे लगता है वो कुंवारा फिल्म का घर है।
1: क्या रखा है, सही हो गलत जवाब में, राइट? उससे फैक्टर मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको नहीं, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको कुछ ध्यान है ये सीन, लाइक ये साउंड ट्रैक किस पे चल रहा है, क्यों आया, कब आया ये?
2: मुझे थोड़ा सा ऐसा याद आ रहा है, जैसे धुन सुनाऊं कि वो गाने में ना ना सोना ना हीरा ना मोती चावरे, मैं तो इस दिन का वही है।
1: कौन सा सोने ऐसा रंग है मेरा
2: लग रहा है?
1: नहीं, एनीवेज, तो आई गेस यू गेस्ड इट फ्रॉम कि गोविंदा और उर्मिला मातोंडकर की एक मूवी थी कुंवारा, दैट्स हाउ यू फिगर इट आउट। नहीं, मेरे ख्याल से उसका नहीं है ये वेल, मैं बता देता हूँ, ये है मूवी हम तुम पे मरते हैं। अगर आई डोंट नो, मतलब इट वाज अ गुड लाइट मूवी कि दो घर वाले आपस में सामने रहते हैं, अमीर है और समहाउ बस उन्हीं के घर है पूरे गांव के अंदर, कोई है ही नहीं, लाइक आसपास कोई प्लॉट भी नहीं है, ऐसी मंदी ना मूवी बिना लाइक कंसेप्ट के। अमीरों के घर है बिल्कुल अगल बगल, दे आर शेयरिंग द सेम बाउंड्री, पता नहीं क्यों, क्योंकि बगल में प्लॉट से बॉस वहां से ले आओ। एंड फिर ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये जो विलेन है, मुझे नाम याद नहीं है, सुपर मॉडल थे उस टाइम के, अभी भी होंगे, तो उनकी एंट्री होती है और ये छाता लेके खड़े हुए हैं और फिर ये गाना बजता है, सामने से उर्मिला मातोंडकर आ रही होती है। बट अगेन यू आर राइट, बट वो टाइम पे फनी था ना, उस टाइम पे किस तरह की लंबे नाम वाली मूवीज बन रही थी, हम तुम पे मरते हैं, हमारा दिल आपके पास है, हम आपके दिल में रहते हैं, आप मुझे अच्छे नहीं लगने लगे। राइट, उनकी काफी लाइक एक्टिंग जो थी अच्छी लगती थी उस टाइम पे, लाइक यू नो लाइट है, सिचुएशनल है, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी काफी अच्छी होती थी।
2: वो हम तो मरते हुए हैं उसमें भी उसका राजू का जो ये था किरदार,
1: राइट,
2: वाज वेरी यूनिक, लाइक बच्चा का किरदार था बट ही वाज यूनिक, आई मीन आई डोंट नो हाउ ही अडॉप्ट टू दैट रोल, ही इतना फ्लेक्सिबिलिटी कर पाता था,
1: राइट। उसके अंदर ये जो मूवी थी हम तुम पे मरते हैं, उसके अंदर एक सॉन्ग था जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, अगर याद है आपको सॉन्ग, और वो ट्रेन पे करता है, और उसके अंदर आई थिंक दो वर्जन थे इस गाने के जब टीवी पे आते थे, एक वर्जन के अंदर उसकी जो टी शर्ट थी उसके अंदर एक स्क्वायर था, उसका कलर चेंज होता था वीडियो के अंदर ही, और मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि कैसे हो रहा है।
2: करेक्ट, आई मीन उससे मैं देख रहा था वो, आई थिंक वो बाहर के आउटसाइड कंट्री का था, राइट? आई डोंट थिंक इट वाज फ्रॉम इंडिया,
1: ये मे बी, अब मुझे इतनी पिक्चर थोड़ी ध्यान नहीं है, बट मे बी, या
2: वो ट्रेन से गया मेट्रो से, या वो जो था ट्रेन वो, आई डोंट थिंक आई सीन दैट इन इंडिया, वो शायद स्विट्जरलैंड हो सकता है, आई थिंक।
1: ओके, आई एम 100% श्योर हम दो अलग अलग मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी आप कहाँ, रस्ते में घर पहुंच चुके हैं आराम से, क्या प्लान है?
2: अभी पहुंच गया, जस्ट पहुंच गया,
1: सही है, बढ़िया, चलिए आराम से रहिएगा, ठंड बढ़ रही है, कल गर्मी है लेकिन उसके बाद दोबारा ठंड है, तो संभाल के रहिएगा। थैंक यू, बाय,
2: बात करते हैं।
1: तो अमर साहब थे जिन्होंने गैस करा, वेल इट रीड डजंट मैटर सही था गलत था, क्योंकि बहुत चांसेस है मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं तो यूट्यूब पे चला रहा हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि मैंने सही नाम बताया कि उस मूवी का है। बट इम्पॉर्टेंट है कि ये यादें हमारे याद कर दें, ये जो साउंड ट्रैक्स होते हैं जिन्होंने सुने हुए हैं उनको वो पुरानी यादें उस टाइम की, अगर वो स्कूल में थे या उनके क्रश था कोई, तो एकदम से वो वापस उस फेस में चले जाते हैं। वेल, अगला मैं क्लू देता हूँ विच शुड बी वेरी सिंपल इनफ एंड या सुनते हैं इस क्लू को।
3: डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम डम

क्या लगता है, मुझे लगता है ये तो मालूम होगा यार, तो जरूर करके फोन बताएं हमें। नंबर है 9199998595। मैं वेट कर रहा हूँ, फिर जब फोन आएगा तो इस मूवी के बारे में बातें करेंगे।

0: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देके पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं। और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
1: Paid for by Desi Blue. Desi Blue.
2: हम सब दिवाली is bringing alive the festival of lights and you don't want to miss it. Get ready for an unforgettable celebration of Indian culture featuring spectacular performances, delicious food, exciting shopping, family fun and so much more. Bring your family, bring your friends and come experience the magic of Hum Sub Diwali and calling all musicians, composers and creative talents. Could you create the sound of Hum Sub? Enter our exciting Hum Sub theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sub story. For complete details about the competition and Hum Sub Diwali, visit humsub.org.
0: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
1: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: वेलकम बैक, मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। और जाने से पहले जो मैंने साउंड ट्रैक बजाया था वो था साथिया का, नॉट दैट साउंड ट्रैक, जो मैं ट्रिविया कर रहा था वो साथिया का था। क्या मूवी थी नया, क्या अमेजिंग मूवी, व्हाट एन एंट्री है। देख ये सारी जो मूवीज थी जिसके अंदर आपके विवेक ओबराय, एक तो उनके बाल आगे गिरे रहते थे, क्या मस्त लगते थे यार, वो क्या हेयर कट चला था सबका, मजा आता था। एनीवेज, तो बात कर रहे थे हम जब ट्रांजिशन होता था मौसम का और हम क्या क्या करते थे, वो हम किस दौर में रहते थे, हमें क्या क्या यादें हमारी। एक मुझे याद है कि यार ये जो मौसम था ना, ये उस टाइप का था जहाँ पे पता नहीं था कि सुबह आपको स्वेटर पहन के जा रहा है क्योंकि मम्मी ने क्या रखा है, बाकी हमें ठंड नहीं लग रही है, हम तो भैया मर्द हैं, हमें ठंड नहीं लगती है, लेकिन मम्मी क्या भैया स्वेटर पहन के चले गए। अब गए स्कूल में, खेलने कूद रहे हैं, गर्मी लग गई, पसीना आ गया तो स्वेटर उतार दिया, अब करना है क्या है। फिर बनते थे हम मोहब्बत के शाहरुख खान की, गले में लटका लिया, कमर में लटका लिया और टाइट कर रहे हैं, निकले आ रहे, करे आ रहे, करे आ रहे, क्या क्या करना पड़ता था यार। ऐसी कुछ यादें हैं तो बताइए, नंबर है 9199998595। वैसे मुझे सर्दियां बहुत पसंद थी फॉर टू रीजंस, एक रीजन मैं नहीं बताऊंगा आपको, सेकंड रीजन ऐसी गलती से निकल गया, टू रीजन, एक ही रीजन था मेरे पास। एक रीजन ये था क्योंकि जैसे कि मैंने कई बार बताया कि मैं तो केवी से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और एक्चुअली नहीं वो मैटर नहीं करता इतना, इरिस्पेक्टिव, तो केवी की जो ड्रेस थी ना सर्दियों की, वो थी ग्रे, स्टील ग्रे कलर की, जो सुन रहे हैं केवी वाले हैं उनको अगर याद होगा, और वो पैंट थी, निकर तो पहन नहीं सकते यार, आई यूज्ड टू हेट उस टाइम पे निकर पहनना, तो मुझे लगता था बॉस क्या कर रहे हो यार, बड़ा हो चुका हूँ, यू नो वो स्टेज होती है जहाँ पे हर बच्चे को लग रहा होता है कि अब बड़ा हो गया हूँ, और जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है यार बचपन ही अच्छा था। तो मैं उस स्टेज में था जहाँ पे लाइक यार निकर क्यों है, पैंट पहननी है, कितनी बेइज्जती हो रही है, चाहे सामने किसी को पता भी नहीं है मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ दिल में मुझे लग रहा है कि मैं तो बेइज्जती हो रहा हूँ। तो मुझे सर्दियाँ इसलिए पसंद थी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे पैंट पहनने को मिलेगी और कम से कम वो ढंग के कलर की है, नॉट लाइक कि वो गंदा सा ब्लू कलर है, और उसके ऊपर स्वेटर पहन के क्या बिल्कुल हीरो की तरह जाएंगे, सब दिमाग में चल रहा है, सामने बगल पीछे किसी को नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अपने दिमाग में खुश हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट सोचो कि दैट्स अ लाइफ लेसन, उस टाइम पे हम सीख सकते हैं आपने आपको पीछे देख के कि उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लाइक इन अ वे कि किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कि हम अपने आप में ही खुश हैं कि यार मैं मस्त लग रहा हूँ, आई डोंट केयर सामने वाला देख रहा नहीं देख रहा है। एनीवेज, जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझा तो कोई नहीं यार, बहुत मौके मिलेंगे समझने के इस बात को। बढ़ते हैं अगले ट्रिविया की तरफ, एंड इसके लिए मुझे हिंट भी देना होगा तो मैं हिंट दूंगा। ऑलराइट,

क्या लगता है? ठीक है, मैं हिंट अभी दे रहा हूँ, लेकिन जिनको सोचना है, दिमाग के घोड़े चढ़ाने हैं, वो चढ़ाने दो ने। ऑलराइट, तो ये ऑफ कोर्स हिट मूवी का गाना है जिसके अंदर बच्चे भी हैं। बच्चे प्लेड अ वेरी गुड रोल और इसलिए पिक्चर काफी हिट थी है। तो सोचिए, बताइए, फोन करके, नंबर है 9199998595। एंड समहाउ मुझे लगता है इस गाने के लिए, शायद अगेन मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे कंफर्म करने दीजिए, मैं फिर बाद में बताऊंगा कि इस गाने के लिए जूही चावला जो है, ओह वाओ, मैं हिंट पे हिंट दिए जा रहा हूँ, जो जूही चावला है उनको शायद नेशनल अवार्ड मिला था डांस के लिए। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, चेक करता हूँ फिर मैं बताता हूँ।

0: Sudara here, Radio Nada 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
1: वेलकम बैक, मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। जो मैंने बताया कि गाने के लिए मिला था नेशनल अवार्ड, बट डांसिंग के लिए नहीं, सिंगिंग के लिए। तो सिंगर को मिला था, नॉट डांसिंग के लिए, जूही चावला साहब को, मैम को। मूवी थी, क्या थी मूवी, एक तो खुद भूल जाता हूँ। हम है राही प्यार के, क्या मूवी थी यार। ऐसा मुझे लगता था कि यार ऐसे भाई बहन होने चाहिए तीन चार, और मस्ती कर रहे हैं, कभी पलंग के नीचे भाग रहे हैं, ऐसे प्रैंक्स कर रहे हैं, क्या मज़ा आता था भाई। मैं तो बस लड़ता था, मेरी बहन मेरे को पेन मारती थी, मैं उस पर पेंसिल मारता था, हम यही काम करते थे, और फिर हम चप्पलों से पिट रहे होते थे। तो चलिए अगला क्लू मैं देता हूँ। दिस इज, ये किसी मूवी से नहीं है, दिस इज अ प्राइवेट सॉन्ग, एंड आई एम श्योर लड़कियाँ तो फटाक से पहचान लेंगी।

नो किडिंग, मैंने ये वीडियो चलाया तो मुझे इसके अंदर जो मेल एक्टर है, मॉडल है, ही इज द सेम गाय डीनो मोरे का छोटे भाई. मुझे लग ही रहा था यार सिर्फ एक पॉप सॉन्ग में आके तो नहीं जाएंगे यार. ही इज देयर, बस कोने में बैठे हुए हैं एज यूजुअल बिना एक्सप्रेशन के, बट स्मार्ट थे यार. जो भी कहो, डीनो मोरे के छोटे भाई हैं तो क्या हुआ, हैं तो स्मार्ट. सो या फोन करके बताइए कौन सा गाना है, किस सिंगर का है, क्या लिरिक्स हैं. नंबर है 9199998595.

0: दोस्तों, पता ही नहीं चला कि आज की शाम कब निकल गई। आज मौसम के बहाने कितनी पुरानी चीजें याद आ गईं। धूप में रखी हुई रजाई, वो ऊन के चुभने वाले स्वेटर और वो गाजर का हलवा जिसके बनने के इंतजार घंटों करते थे और खाते थे दो मिनट में। शायद 90s की सबसे अच्छी बात ये थी कि चीजें थोड़ी स्लो होती थी, हर चीज तुरंत नहीं मिलती थी। गाने का इंतजार करना पड़ता था, टीवी पर फेवरेट प्रोग्राम का वेट करना पड़ता था और गाजर का हलवा वो भी पेशेंस टेस्ट करता था। लेकिन शायद इसी वजह से उन छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा थी। आज सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है, तुरंत, लेकिन कभी कभी लगता है उस इंतज़ार का मज़ा ही कुछ और था। तो आज की शाम अगर कोई गाना आपको अचानक किसी पुरानी याद में ले गया हो तो बस उस याद को थोड़ी देर और रहने दीजिए और अगली बार जब रजाई निकालें, धूप में बैठें या गाजर का हलवा खाएं, तो याद रखिए कभी कभी सिंपल चीजें ही सबसे अच्छी मेमोरीज बनाती हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अर्पित और ये था इधर उधर की बातें। 3 हफ्ते की दूरी के बाद मिलना अच्छा लगा आप लोगों से। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पुरानी यादों को जिंदा रखिए और ध्यान से रहिए, क्योंकि किसी ना किसी के लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं। गुड नाइट और सुनते रहिए इधर उधर की बातें।
1: Your talent brought you this far. Your dreams can take you even further.
2: But when immigration questions stand between you and your future, you need more than just information. You need trusted legal guidance and a team that responds.
1: With over 100 years of combined attorney experience, Brown Immigration Law focuses exclusively on immigration law, helping professionals, families, students, entrepreneurs, and businesses navigate the U.S. immigration system.
2: And the best part? Their North Carolina immigration team is located right here in the Raleigh-Durham area, ready to serve our growing community, as well as clients across the country.
1: Need guidance with an H-1B, L-1, employment-based green card, perm process, or business immigration matter?
2: Planning to reunite your family, adjust your status, or become a U.S. citizen?
1: Clear communication, personal attention, and trusted legal advice from Brown Immigration Law.
2: Your future shouldn't have to wait. Call 919-225-3963. That's 919-225-3963.
1: Or visit brown-immigration.com.
2: Brown Immigration Law, local guidance for your immigration journey. Bigger dreams begin with Brown.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वदा नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। सात से दस में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आज की आपकी इवनिंग? इवनिंग तो काफी शानदार चल रही है क्योंकि मौसम जो है वो काफी खुशनुमा हो रखा है और इतने दिनों से जो गर्मी महसूस किए जा रहे थे हम लोग, बहुत हद तक ये गर्मी जो है वो कम हो रही है। एंड ऐसे सुहाने मौसम में सबका मूड तो ऑटोमेटिकली खुश रहता ही है बॉस। तो इस प्यारे सुहाने मौसम में, अच्छे मौसम में एक कप अदरक की चाय मिलती है तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, और उसके साथ अगर कुछ कुकीज़ मिल जाए, बटर कुकीज़, तो क्या ही कहने। इस प्यारे और सुहाने मौसम के साथ ही एक सुहाना ब्यूटीफुल सॉन्ग प्ले करने जा रहा हूँ आपके लिए। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन, जिसने सेट कर रखी है इस इवनिंग की वाइब। तो अब वक्त हो चुका है कि हम जान लेते हैं कुछ लोकल खबरों के बारे में। तो रैली में डेटा सेंटर्स के काम पर लगी रोक। जी हाँ, रैली सिटी काउंसिल ने शहर में बड़े डेटा सेंटर्स के नए निर्माण पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि वे इस समय का उपयोग ये समझने के लिए करेंगे कि इन सेंटर में होने वाले शोर, कंपन और बिजली पानी की भारी खपत को कैसे कंट्रोल किया जाए। हालांकि कुछ लोकल लोग इस रोक को 32 महीनों तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मतलब ऐसा है कि कह रहे हैं कि डेटा सेंटर्स की वजह से एनवायरनमेंट का भी नुकसान बहुत हो सकता है। तो एक बार ये उनकी जो भी प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद डेफिनेटली थिंग्स विल गोइंग टू बी सॉर्टेड। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिश्क रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

एंजॉय किया ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापुनिवादा नाइट्स। आरटीपी के पास नए मेडिकल कैंपस का भूमि पूजन। यूएनसी हेल्थ ने रिसर्च ट्रायंगल पार्क के ठीक बाहर धर्म में अपने नए 48 एकड़ के मेडिकल कैंपस का भूमि पूजन किया है। इस बड़े प्रोजेक्ट के पहले फेज में 6 मंजिला मेडिकल ऑफिस बिल्डिंग और बड़ा पार्किंग एरिया बनाया जाएगा, जो साल 2028 तक खुलेगा। आगे चलकर यहाँ 152 बेड वाला एक बड़ा कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है वो भी तैयार किया जाएगा। ये मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर में होने वाली सबसे बड़ी

वेल एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पुनीत वाला नाइट्स एंड धर्म के गैरेज रोड पर भीषण आग। आज सुबह धर्म के गैरेज रोड के पास एक जंगली इलाके में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कम से कम 5 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसमान में काफी धुआं देखा गया है और प्रशासन अभी इस बात की जांच कर रही है कि क्या किसी संपत्ति को कोई नुकसान हुआ है या कोई घायल हुआ है। आग लगना इट्स लाइक अ वेरी इमरजेंसी वाला थिंग एंड इस टाइम पर अगर सही मौके पर मदद मिल जाए तो चीजें जो है वो काबू में रहती है, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, आपके आजू बाजू हमेशा ध्यान रखे। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करने जा रहे हैं अगला ही गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

वो क्या गाना था, मतलब इस गाने में वाकई में इस शाम की वाइब सेट कर रखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पट्टी पता नाइट्स एंड रैली और कैरी के बीच नई बस सेवा, वेस्टर्न बीआरटी रैली और कैरी शहर को आपस में जोड़ने के लिए वेस्टर्न बीआरटी दैट इज बस रैपिड ट्रांजिस्ट का आधिकारिक डिजाइन आज पेश किया गया है। अभी तो बस पेश किया गया है ये नई रैपिड बस सेवा, दोनों शहरों के डाउनटाउन के बीच कनेक्टिविटी और ट्रैफिक को बहुत आसान बना देगी। मतलब कोई भी देश की ट्रैफिक अगर अच्छे से चल रही है, लाइक शॉर्टकट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो नथिंग इज लाइक दैट। आपने एंजॉय किया ये गाना और इससे भी बेहतरीन और ज़्यादा अच्छा गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बने रहेगा रेडियो नायरा पर पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।